0: शिबट कहीं पैसर लो ये
1: अम्मो लेकिन टेस्ट नहीं हमारा उन्हें
0: इन्हीं फॉर्म कार्ड होना ही पापा बोले इन्हीं फॉर्म गर्ल नंसे नहीं ताईगी किते
1: ऐसे पापा सबूत दे
0: किते इल्ले बेजार हैं था साई
1: ताजो कौन इल्ल तर ये चेनी होनी
0: है पैसर लो मुनोंगी तो शे बेजार है पाव है ना कहे आह देव बच्चा कुशे कामी कल्टी मान गली जे हमी उरले दीस या संसार अंत सगला संगता कुशे अंत हसन केड़नु उरी जे अमची दुख हमी भाई दाखों ची नीते देवक समर्पी जे हसन दी तू आता पाइलेट की
1: ओए अंडी आता हूँ पाइलेट
0: इन्हीं फॉर्म चेंज अला पाइलेट है चेंजी फॉर्म गाल नंसा साई
1: ओए अंडी आओ आता पाइलेट है एक भयंकर पाइलेट
2: पहले टॉयलेट इन बोस मागेर पाइलेट
1: अरे तू एक कौनसा मूनी सा अपग्रेड दे ले तू एक अपग्रेड दो ना इनकी अरे अलबटा अब एक भयंकर पायलट अरे मुझे 8:30 चे फ्लाइट कोड़ी आता है बम्बे ए
2: आग ना दरिया दे तो ना तू का वागली ताटे अंजल बंगड़े तरले पर मिलते ले आग का सरकाले मिलता सर्ग मिलता कि एम कौन मिलता
0: वही रिश्वत सर्ग एम कौन किस तरह